0: होमियोपैथी कब्ज और मतली में मुफीद है। मालिश के फवायद, सर दर्द, कमर दर्द, पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात, बालों को लंबा, घना और सिया चमकदार बनाए, खुश्की और सिकरे और सर की जल्द के दानों से निजात दिलाए, बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे, वालिद के मरीजों और हर किस्म के जख्म के लिए भी मुफीद है। जिस्मानी थकावट, जहनी सुकून, हर किस्म की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल, सुबह के वक्त निहार मुंह 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिए। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट 0345-923-2860।
1: आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम कुदरती अज्जा से तैयार करता है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम का रोजाना इस्तेमाल आपके चेहरे को बनाए तरोताजा। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे से दाग धब्बे, कील मुहासे, छाइयां और आंखों के गिर स्याह हल्के खत्म करे। आपके चेहरे, गर्दन और हाथों की झुर्रियां खत्म करे और आपकी उम्र को छुपाए। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम में सनब्लॉक की इजाफी खसूसियात मौजूद है जो धूप के मोजे से आपके चेहरे को रखे महफूज। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और विटामिंस दे आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा, शफाफ, बेदाग, गोरा चेहरा। बेहतरीन नतीज के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर ले। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो ले। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 0345-923-2860 0300-585

0: हासिल जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं। अरे बाबा तुम बदलो तो मजबूरियां, हम बदले तो बेवफाई।
1: साथ साथ चलने वाले राह क्यों बदलते हैं,
0: बस जाते हैं दिल में इजाजत लिए बगैर।
1: रास्ते भटकते हैं
0: वो लोग जिनको हम जिंदगी भर पा नहीं सकते।
1: दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है।
0: बात तो आम सी है पर इतनी आम भी नहीं। अरे सबको खुशियां मिल जाती है पर हमारा हिस्सा खो जाता है।

0: है हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। अरे हम प्यार नहीं करते, हम इश्क करते हैं। हमें प्यार नहीं होता भाई, हमें इश्क होता है। जब करते हैं ना तो दिल से करते हैं। सर कभी आपको प्यार हुआ है? एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। फिर क्या हुआ? फिर बिजली चली गई यार। ए वही जान में पे दानवा ने शिंदे ले दे, समद तबाह है मीन में कड़ेरा। यार कम जमुंग हक थे उस दा जमा हक थे, और रिदुन को और खा पपलेट के चावले प्रति दी चम्मच प्रोते दपा सपे सलाद दी, टमाटर दी, बादरंग दी, प्याज दी, चना दा और नोर इनवर्ट नाट इनवर्ट दा जमा हक थे, इंदा च जमा हक थे करा। औदा गर्मी इमदी मजेदार इमदी पपलेट के मरात प्रति दी उबमरात प्रति दा जमा हक थे दा बजदा से खुरा में जो मेरा है वो मेरा ही होगा। कालू के शाबा डबे तोर दे कार्य मुकम्मल स्पिन मी एम अगेन सर बुंग जानता नो टेंशन विटामिन सी पे स्वाश और ग्लूटा वाला क्रीम राउडी दी ही एम फ्रॉम जेदा। मीना वालों गलत चीजों ने मैं इस्तेमाल खा जिन्हों ने इस्तेमाल किया आगा चीजों ने इस्तेमाल से वापस संभाली। शाब के कालो के पास 0311 720 5726 गुरु चुड़ुम्बे कालर मुंग सर पास होते। अस्सलाम वालेकुम। भाई दी खरी सोख द कम जैना
1: नाजी
0: पखेर आले सिंह खे

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क, मन राम अमन।
5: माँ का दूध हर बच्चे की पहली और बेहतरीन ग़िज़ा है। ये बच्चे को ज़रूरी ग़िज़ायत फराहम करता है, बीमारियों से लड़ने की क़ुव्वत बढ़ाता है और उसकी सेहतमंद नशोनुमा करता है। पैदाइश से 6 माह तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं और 6 माह के बाद इजाफी ग़िज़ा के साथ 2 साल तक दूध पिलाना जारी रखें। याद रखें, कोई भी डब्बे का दूध माँ के दूध का नेमुल बदल नहीं।
6: खुशखबरी खुशखबरी द बटग्राम और तोरगर खलको द पारा खुशखबरी उस तासुला द स्वाद पेंडई पेसलाबाद और लाहौर तलो जरूरत निश्ता जकचे तासु द पारा बटग्राम की शाफाद एंड शाह इस्लाम तोरगर गारमेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स शूज सेंटर हर किस्म सामानों न राउड़ी दी पदे के कॉस्मेटिक्स मिनियारी सामान द वदुनु सामान द माशुमानो और द जनानो हर किस्म कपड़े दे सरा चप्पल शूज और दे न हिलावा हर किस्म लूही यानी स्टील प्लास्टिक सिल्वर मुनासिब रेट सरबतास्त मिलावेगी। एड्रेस पता याद साते बटाग्राम दोराई की मंगराई कमेसर तोरगराडा अल सैयद जनरल स्टोर लपास द्वेम मजल की शफाद एंड शाह इस्लाम तोरगर गारमेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स शूज सेंटर बटाग्राम प्रोप्राइटर शफाद एंड शाह इस्लाम मोबाइल नंबर 0336-54-58-15 द्वेम नंबर 0370-960-82-17 यो जल जरूर वर्षे देर अरजान रेट सर बतास्त मिलावेगी।
7: ग्रानो औरिदुन को तसो आवाज अवरे द रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम मुंग सरे उसे।

रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बडग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्त तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का। ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटाग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा।
3: ग्रानो रिदुन को द अमन रेडियो FM 88.4 बटाग्राम दे दा वक्तासो जमुंगा इस्लामी नशरियात आवरे।

0: हाँ जी डॉक्टर साहब, द मैसेज दिला रही मुझे मैसेज लगे भी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
0: वे डॉक्टर साहब, जमंगा कोर के द कब्ज बीमारी डेर ज्यादा द जी हुई ददे इलाज त देखना।
1: बिल्कुल जिश्ता ओ बडे डेर के सबजे डेर डेर खरे गर्दी दिल कवे नास तड़े रमक कवे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह दवा पपल टिक टाक शी।
0: हाँ जी मनोन जी शुक्रिया एंड तशक्कुर। बिल्कुल सिंगर डॉक्टर साहब ओवेल उबू इस्तेमाल ज्यादा कवाई नास्ता चुकम दादा कम कवाई चलो तस तो ब्याह हम ढेर तकलीफ हुई नो ब्याह तसो क्लिनिक तराश है डॉक्टर से बगुरी और तस तो ट्रीटमेंट शुरू की दे कबज बेहतरीन मेडिसिन पर होम्योपैथिक के सदे गारंटेड और बेहतरीन इलाज चुकम दे आगा हम शता दिन तसो कोशिश कई जमुंगा सेंटर ता विजिट कई जुबा कॉलर तरफ ता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, सो को हुकुम जेना। कोशिश प्रोग्राम के सेहत वाले सर मुंगा खबर है तरीको डॉक्टर मुख्तरम सरा मौजूद दे नो कचरे तासो असी गप शप्त पारा कवाई नो आगे पारा जमुंग नोर प्रोग्राम चुकम दे वेट का इंतजार होगा। ठीक शुला।

स्टोर एंड कॉस्मेटिक्स स्वात रोड बिशाम। आहा, हसन मेडिकल स्टोर मेन बाजार बिशाम। आलम मेडिकल स्टोर स्वात रोड बिशाम। जान मार्ट मेन रोड बिशाम। हक मेडिकल स्टोर बिशाम, बिशाम रोड इमदादुल हक सरा। बरकत मेडिकल स्टोर बिशाम। गुलटी सेंटर चाय दुकान करक बाजार ताकोड रोड अलाई गुलजादा सरा। फैसल शॉपिंग सेंटर नेस शमसुल हक मार्केट मेन बाजार बिशाम। शाफाद एंड शाह इस्लाम तोरगर गारमेंट्स एंड कॉस्मेटिक शूज सेंटर नेस पिराड़ाई बाजी दुकान कमेसर तोरगर अडा दोराई चौक शमसुल इनाम शम्स हैदर लेडीज मार्केट गली नंबर 2 बना अलई। लुकमान सुपर स्टोर पुलिस चौकी सर बिशाम रोड पिपले मेरा। सरहद शॉपिंग सेंटर गलगीत रोड मेरा सजाद सरा। द मेरे खलको द बाटकोट खलको दंदे खलको द यादगार खलको द जम्बेड़े खलको लाड़ बशे सरहद शॉपिंग सेंटर सजाद खान सर मिलावेगी प मेरा के। सनराइज ड्रग्स एजेंसी अस्पताल रोड बिशाम। मीनावाल उतासु तब जमुग प्रोडक्ट पर हर जे के मिलावेगी। हर हम मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर के जान तवाखले सिफात कॉस्मेटिक्स देर जबरदस्त रिजल्ट रे लचा तक कस्ता। सिफात राइस फेस वॉश सिफात राइस ब्यूटी क्रीम देर जबरदस्त कार कभी ओवर सरब सीरम लाजमी वाखले और सिफात राइस ब्लीच गोरा का नमी नवालो वही चे ब्लीच न मिलावेगी शर्ट शिवी दी और दे सरा सरा जमंग टोल पर आडक हर हम मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर के बतास्ता मिलावेगी। तासो बदासो के जमा सपोर्टरो मीना वालो खबर हवा और मड़ो सब और के बस के दाखवाली जान न उच के कीने कीने जानू मड़का बस का पालवान लाला खबर हवा और सिफात ब्यूटी क्रीम सिफात क्रिक क्रीम सिफात जैतून हर्बल ऑयल सिफात हर्बल स्प्रे स्किन सिफात फेस वॉश सिफात राइस फेस वॉश सिफात कलवंजी शैम्पू सिफात विटामिन सी सीरम सिफात सन ब्लॉक ता बता सुत मिलावेगी। मोहसिन शाह ट्रेडर जेल मोल बटेग्राम टूल दुकानदारान मेडिकल स्टोर वाला जनरल स्टोर वाला कॉस्मेटिक स्टोर वाला और सर रायता हो के 10% डिस्काउंट सरा। नंबर ए नोट के 0311-158-7745 0311-158-7745 सिफात कॉस्मेटिक्स वाखले नेवी पर अडकती जबरदस्त रिजल्ट पके खर्चे उखे दारूर कामयाब के दा पर अडक कामयाब के दचा द कस्ता। मनन स्टासो स्टासो द मैसेज ऑफ द कॉल स्टासो द गपशप के जमंग द खुली दास से खबर खतली भी स्टासो दिल जारी शिवी स्टासो जरखा पशे भी बखना वालू से कच्ची जमंग रूने ये खुएं दिए मशरान ये कशरान ये नो कशरानों ना गलती की ये खा नो मंग बा उबा खाई او په دواګانو کې به موږ یاد ساتي او دغه شانې کوم اعتماد چې تاسو په موږ وکړ تاسو ډېر مننه اوس زما د تلو ټایم دی سبا به دا ټایم بیا ګپ شپ لګو تاسو میسج کال دا به شاملو کنه مینوالو کنه کیګو بنا جن بکو خوشحالی بکو ودونه کوژدنې بکو جګړې بنه کو اس رات را کی اجازت دلوی اللہ پامان پاکستان زندہ باد

0: Nick smatter the shoes of bro ab mein itna attitude hai hai na ki allah meri to wa itni attitude to gal mein nahi hoti jitna ab mein hai to wala maaf kare thank you aapka shukr guzar Nick smatter the shoes
1: positivity chhod yaad hai kar
0: acha main ye kab se note kar rahi hu puri radio mein sabse zyada attitude human just mr salar thank you आपका शुक्र गुजार है कि किसी ने हमें नोट किया यार इसके लिए क्लिपिंग करो प्लीज किसी ने हमें नोट किया थैंक यू हम आपका शुक्र गुजार है तो जिसने हमें बुरा भला भी कहा उसके लिए भी हम उसे दुआ देंगे क्योंकि उसने हमें इस काबिल तो समझा ना नेक्स्ट मैसेज ऑफ द शो वाज सलाम सैयद गनी अच्छा बस महसूस रहा مسج د اوس راغلی تانک یو مننه ستاسو منندې خو دا مسج موږ نه شي ځکه چې موږ داسې خلک نه یو چې موږ د پردي مسج شامل